0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय।
0: भक्तर भगवान की
1: जय।
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय।
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

जाती मैडम डिस्को, वीआईपी में कॉम्प्लीमेंट्री शॉट्स भी दे दो इसको, इसको गाड़ी चाहिए लंबी, म्यूजिक चाहिए ये जाती महंगे क्लब में जहाँ होता डंका क्राउड, लुधियाने से आई लड़की यूनिवर्सिटी पढ़ती है, कहती तो है स्टूडेंट है बट आई डाउट।

0: सांदाई के बन में नाचनी छन मजूरा।
1: वनमा जाँदा सलाई लाइटर जस्ता आगजन्य वस्तुको प्रयोग नगरौं। वन छेउमा स्याउला झारपात नजलाऊ। वनमा आगो लाग्नै नदिऊ। लागिहालेमा होसियारी पूर्वक आगो निभाइहालौं।

मिका पना बढ़ो सुस्ताई सुस्ताई सहजा भौतिक जगत में नहर नारी ले प्रगति पथ को ये।